0: हेलो हेलो,
1: हेलो। हाँ
0: हेलो,
1: हम बाहर होने हेलो
0: हाँ
1: मुनि बांदे अन्य अन्य वाचो निभी कुंजे को तुम भी करना।